प्याला 10 रुपये माल मिलेगा तो भी गोल्डन कलर का माल मिलेगा। 10 से 10 देखने वाले का नजर खराब हो जाएगा सर जी। 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये बोलो जी बोलो।

0: कैसे ले भाई
1: आप इधर बता ले
0: चलिए चलिए इधर चलिए भाई 21 के अंदर दे जरा भाई एक कैसे